गावन तुदनों वीर करारे, गावन तुदनों पंडित पढ़ नरखीश्वर, जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनों मोहनी आमन मोहन, सुर्ग मच पै आले, गावन तुदनों रतन उपाय तेरे, अड़सठ तीर्थ नाले, गावन तुदनों जोध महाबल सूरा, गावन तुदनों खाणी चारे, गावन तुदनों खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे, शी तुदनों गावन जो तुद पावन, रते तेरे भगत रसाले, होर केते तुदनों गावन, से मैं चित न आवन, नानक क्या बिचारे, सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी, माया जिन उपाई, कर कर देखै कीता आपना, ज्यों तिस दी वड्याई, जो

तुद बिन सिद्धि किने न पाइया, कर्म मिले नाही ठाकर हाइया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारन हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाऊं। आखण औखा साचा नाऊं, साचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाए चलिय दुख।

मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरा सुरहा। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भाग हीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया, मिल जन नानक।

मन चित वह उद्यम जा आहर हर जीव परया शैल पत्थर मह जंतु उपाय ताका रिजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके

मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद

गुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दाता, हर त्याव हो संत हो जी, सब दुख विसारण हारा।

जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावह हर त्यावह तुझ जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त भये जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जमकी फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ।

तू कर कर वेखै है जानहि सोइ, जन नानक गुरमुख प्रगट होइ। आसा महला पहला।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई हमरे करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब

भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, पूजो

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एकी पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ।

तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहि भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, पुत भुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो संकर कैठा। सिगरी सृष्टि दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए है, ताके काल निकट नह आए है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

रब गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे, कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ। साकत हर रस साधना जाने आ तिन अंतर हो मैं कंडा हे। ज्यो ज्यो चले चुभै दुख पावे जम काल सह सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शुभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख।

0: something wrong.
1: कोई नुकसान इतनी आवाज छड़ी हुई है ना तो टेस्ट दे लाया है हाँ
0: रहना ना पाँ

नहीं चेंज कर दो, चेंज करो, नहीं चलिया। ओके नहीं चलिया नहीं, कह लाइए तारे ना ना चलिया नहीं।

कौन? 14 बंद हो गया, 14 नंबर बंद हो गया, कौन कौन नहीं चल गया? हाँ बस 21 रहना हूं।

की महिमा गनी न आवे। काकी एक दर्श तुहारो, नानक पुन संग मोहे उदारो। सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भौ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जब तब पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन हुए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। से सिमरै जिने आप सिमराए, नानक ताकै लागो पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहि समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरह से तनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते। प्रभ को सिमरह से जन प्रवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रदान। प्रभ को सिमरह से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे। प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी। प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दयाला। नानक जन की मंगैर वाला, प्रभ को सिमरह से पर उपकारी। प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे। प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावै, प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता। प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरह तिन अनदक नेरे। प्रभ को सिमरह बसै हर नेरे, संत कृपा ते अन दिन जाग। नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ कै सिमरन कारज पूरे। प्रभ कै सिमरन कबू न चूरे, प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी। प्रभ कै सिमरन सहज समानी, प्रभ कै सिमरन निचल आसन। प्रभ कै सिमरन कमल बेगासन, प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार। सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरह से जन जिन को प्रभ मया। नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए। हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते। हर सिमरन नीच चौकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना। सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल अकारा। हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया। नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ सात अष्टपदी। जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाप्यान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै।
जय मुश्किल हुए अत भारी, हर को नाम किन माहे उधारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनिक माया रंग तिक न बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जे मार्ग जात केला, तै हर नाम संगूत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याहिऐ, नानक गुरमुख परम गत पाइऐ। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जप तै पार पराही। अनिक बिघन जय आई संगारै, हर का नाम तत्काल उधारै। अनिक जोन जनमै मर जामू, नाम जपत पावै विश्राम। हौ मैला मल कबू न तू।

जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औकद साध कमात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते रंगे कै, नानक जन कै बिरत विवेकै, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि बियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै माल खजीना, हर धन जन कुआ प्रवदीना, हर हर जन कै ओट सथानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग पीते तरे, पार जात्यो हर को नाम, काम तीन हर हर गुणगाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिदवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग वडभागी पाईऐ, संत की सेवा नाम त्याईऐ, नाम तुल कछवर न होय, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोय, सलो बहु शास्त्र बहु सिमरति, पेके सर्ब टंडोर, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमूल, अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिम

बहुरतना। शरीर कटाए हों मैं कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए इक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास तपी सर थीवे। अग्न माहे हुमत प्राण, कनिक सब है वर भूमदान। न्यौली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संयमत साधन। निमक निमक कर शरीर कटावे, तौ भी होमे मैल न जावे। हर के नाम संसर कछ नाहि, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि। मन कामना तीरथ देह छुट्टे, गर्भ गमान न मनते हुटे। सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तनते जात। इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबू न बिखिया टरे। जल तू वै बहु देह अनीत, शुद्ध कहा हुए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतित बहुमूच। बहुत सियानप जम का भौ व्यापै, अनेक जतन कर कृष्ण न त्रापै। भेख अनेक अग्न नहीं बुझै, कोट उपाव दरगह नहीं सिजै। छूट सनाही ऊपयार, मोहि व्यापै माया जा। अवर करतूत सगली जमडाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे, साध संगे होम मैं छूरे। जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरणी परे। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभिमान।

हर हर नाम तिन कट कट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख है सगल श्रेष्ठ साजना, सुख दुख जन सम दृष्टिता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निर्धन को धन ते

साध संग किस्यो नि बैरु, साध के संग ना बिगा पैरु, साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साध के संग ना ही हो ताप, साध के संग सजे सब आप, आपे जाने साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बने आई, साध के संग ना कबहूं तावे, साध के संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त गोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साध के संग बसे थान ऊचे, साधु कै संग महल पहुचे, साध के संग दड़े सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म, साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बानु, साध के संग सब कुल उदार, साध संग साजन मीत कुटम निस्तार, साधु कै संग सो धन पावे, जिस धन ते सब को बरसावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग सो बासुर देवा, साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध के संग श्रभ थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म, साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल, साध के संग कलुखत हरै, साध के संग नरक पर हरै, साध

साध के संग न बिरता जावे। पार ब्रह्म साध रित दसै नानक उतरै सा सुन रसै। साध के संग सुनु हर नाऊ साध संग हर के गुण गाऊ। साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै। साध के संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग कट कट डीठा। साध संग पहे आज्ञाकारी साध संगत पही हमारी। साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जानै जीता सुने तीता बखियानै। साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा पूछते ऊंची साध की शोभा मूछते मूची। साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै कस बिन कोए। नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को सोख।

ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाहु नानक ज्यों पाव का सह सुभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगास जैसे तारू पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र शत्रु समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उच्च ते उच्चा मन अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी संभा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा।

ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बिनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन बाहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाक्षर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी किमित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक उर धारै जो अंतर नाम, सर्व मैं पेखै भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानक अपर सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन मैं प्रीत निरंजन दर्स, पर त्रै रूप न पेखै नितर, साधगि टैल संसंग हेत, करना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद विखिया पर हरै, मन की वासना मन ते टरै, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा परसो, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्ण की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हुए ने कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग्राचै, मन तने अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर हुवत कृपाल, आप जड़ै वह नाम जपावै, नानको वैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, सासन पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नितनीत, मंतने अर्पै विष्ण परीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबुद्धै, राम नाम आत्म मैं सुदै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो नयावै, वेद प्राण सिमरत बूझै मूल,

रंग जैसी मत दे तैसा प्रगाश पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल। श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनेक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थ वासी कई कोट बन भ्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपी सर्वोते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कव का विचार है कई कोट नवतन नाम त्याव है नानक करते कांत न पाव है कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्व को ही रहे कई कोट पर दुख न करहे कई कोट माया श्रमाहे कई कोट परदेश परमाहे जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पाथर वृख निप जाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नखियत्र कई कोट देवदानु इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत धार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत्र शास्त्र कई कोट की रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मिर्गाच सब ते नीरै सब हूं ते दूर नानक आप अलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म जीव मर है कई कोट बोजोनी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट कालह थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मह चिंत जह जह पाणा तह तह राखे नानक सब कुछ प्रभ कह हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म मह पार ब्रह्म लहनते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिन को मिल्यो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होया सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत किन्नु विस्तार कई बार पसरियो पासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट किन्ने बहुपात प्रभ ते हुए प्रमाहे समाता कांत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवता तुम प्रगास कई कोट तत के बेते सदा निहार है को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सद सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज सुमावे अपने जन को सा सा सुमारे नानकोए परमेश्वर के प्यारे। श्लोक करण कारण प्रवेक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहारण है जल थल मही अल सो अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस भाव है सोई हो किन मैं थाप उथापन हारा अंत नहीं किच पारा वारा हुक्मे तार अतार रहावै हुक्मे उपजय हुक्म समावै हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनिक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई
ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ, ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸਤਿ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ, ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਉਦਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ।

गाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी, पूरे गुर का सुनु उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेक, सा सा सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आस अनित त्याग उतरंग, संत जना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करहु, साध संग अगण सागर करहु, हर धन के पर लेहु भंडार, नान गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, सा संग भज परमानंद, नरक निवार उदारो जीव, गुण गोविंद अमृत रस पीयो, चित चितो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार, उत्तम श्लोक साध के वचन, अमलीक लाल रतन, सुनत कमावत होत उदार, आप तरह लुकै निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द नाद वाजै, सुन सुन अनद करे प्रभ गाजै, प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे, शरण जोग सुन शरण ही आए, कर कृपा प्रभाव मिलाए, मिट गए बैर भय सबरे, अमृत नाम साध संग लैन, सुख प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण हुई सेव की सेव, आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुनरस न कहते, कर प्रसाद दया प्रभतारी, नानक निभे खेप हमारी, प्रभु की उस्तुत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुख मनि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सुहोत निदान, सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए, प्रधान पुरु प्रगट सब लोए, सब ते उच पाए स्थान, बहुर न होवै आवण जान, हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त।

ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कह मत सगल ते उदास सुंदर चतुर्थ का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कह मुख भने गुरु नानक नाम वचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मैता की गत हुए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध सासंग मिटै संत कृपा ते जमते छुटै जाके मस्त कर्म प्रपाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुन लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रवचीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुर्लभ देहे तत्काल उदारै निर्मल सोभा अमृता की बानी एक नामन माहि समानी दुख रोग बिन से पै परमु साध नाम निर्मलता की कर्म सब ते ऊचता

सुखमनि सुखमनि सुखमृत प्रवना भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी।

गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक देहे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जेति सुभावा विण पाणे के नाए करी जेति सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देहे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसोनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछे के कीटा अंदर कीट कार दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सुजई जे तिस गुण कोए करे सुना है सदपीर सुरनाथ सुना है धरत धवल आकाश सुना है दीप लो पाताल सुना है पोहे न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश सुना है ईसर ब्रह्मा इंद सुना है मुख साला हनुमंद सुना है जोग जुगत तन भेद सुना है सासत सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश सुना है सात संतोख ज्ञान सुना है अठ सठ का इशनान सुना है पढ़ पढ़ पावे मान सुना है लागे सहज ध्यान नानक भगतां सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश सुना है सारा गुणा के गाह सुना है सेख पीर पात साह सुना है अंधे पावे राहो सुना है हाथ होवे असगाहो नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश मन्ने की गात कही न जाए जे को कह पिछे पशुताए कागद कलम ना लिखन हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध मन्नै सगल पवन की सुध मन्नै मोहे चोटा ना खाए मन्नै जम कै साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै मार्ग ठाक न पाए मन्नै पथ सिउ प्रगट जाए मन्नै मग न चलै पंथ मन्नै धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै पावै मुख द्वार मन्नै परवारै साधार मन्नै तरै तारी गुर सिख मन्नै नानक भवहि न भिखु ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान पंचै सोहै दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कह करै विचार करते कह करणै नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तबलै उपर केता पार धरती होर पर होर तिस ते पार तलै कवण जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया गुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाणै कोए लेखा लिखिया किता होए केता ताण स्वाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस ते होए लख दरियाओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाओ असंख पूजा असंख ताप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन राहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर।

ताकि गत कही न जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनहो, पवित्र हो वाहो साचे सुनने नु पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कह वाजा पवन वजाया, वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनी इकना दसवां द्वार दिखाया, तह अनेक रूप नाउ नावने दो किसदा अंत न जाई पाया। कह नानक हर प्यार जियो गुफा अंदर रख कह वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहेला साचै कर गावो, गावो ता सोहेला कर साचै जिथे सदा सच ते आवहे। सचो ते आवै जा तुद पावै, गुरमुख जिना बुझावहे। एहो सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावहे। कहे नानक सच सोहेला सचै कर गावहे। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे।

वेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजो विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद।

0: दीर्घ रोग है दारू भी समाए, कृपा करे जे अपनी तां गुरका शब्द कमाए। नानक कहे सुनो जुनो इत संजम दुख जाए।
1: संतोखी ने सचो सच ध्याया, उन्हें मंदे पैर नरक।

गुता को जागे गुरबिन सूता पगो पेताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंध है पतगवाई मिलना वह किस्ता न पाई रह बेपाणी मणि मसाणी अंधा

ज्ञानी न चहेवा देवा वैरूप करे सिगार। ऊचे कु कहवा दा गावे जोदा का विचार, मूर्ख पंडित हिकमत उजे संजय करे प्यार। धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोह दुआ, जिस दावे जुगना।

पण मुआ पण पालिए पंड हुआ बंदान सो क्यों मंदा किए जित जमे राजान पंडो ही पांडु उपजै पंडे बाजना कोई ना।

एक निमक कड़ी मुख लाग। महला तीजा बिलावल तब ही कीजिए जब मुख होवे नाम। राग नाद शब्द सोहणे जा लागे सहज ध्यान। राग नाद छोड़ हर सेवी है ता दरगह पाइए मान। नानक गुरमुख ब्रह्म बिचारी है चुके मन अभिमान। पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद उपाया। तू आपे आप वर्तदा सब जगत सुबाया। तुदे आपे ताड़ी लाई है आपे गुण गाया। हर त्यावो भगतो दिन सरात अंत लय चढ़ाया।

मन मुख थाए न पाए, पाखंड भगत न हुवई, पार ब्रह्म न पाया जाए। मन हठ कर्म कमावने, थाए न कोई पाए, नानक गुरमुख आप बिचारी है।

सो भगत जिन चित कर तुद अपड़ कोई न सकै सब चख चख पवै झाड़। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदह ते ब्राह्मणा जे चल्लै सतगुर पाए जिन कह हिर

इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंद है चित लाए। नानक जिनको नदर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाए। महल्ला तीजा सत

अत दीर्घ बहु सुआउ मन हट कर्म कमावणे फिर जोनी पाए गुरमुख जन्म सफल है जिसनु वापे लय मिलाए नानक नदरी नदर करे ता नाम धन पल्ले पाए पौड़ी सब वडिआईआं हर नाम विच हर गुरमुख ते आईए जे

जाओ। सतगुर ते खाली को नहीं, मेरे प्रभ मेल मिलाए। सतगुर का दर्शन सफल है, जेहा को इच्छे तेहा फल पाए। गुर का

कर हैं कितने सब हर के किए, जो किच हर करावे सो ओए कर है सब हर के अर्थिए। सो ऐसा हारु सबना का प्रभु सतगुर केवल है, तिन सब वर्ण चारे खानी सब सृष्ट गुले कर सतगुर आज्ञा।

हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर, हरे अपनी कृपा कर हरे आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है, मनमुख ध्यान न लागे, दुख विच कार कमावनी, दुख वरतै दुख आगै। करमी सतगुर भेटी है ता सच नाम लिव लागै, नानक सहजे सुख होए अंदरों भ्रम भौ भागै। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है, हर का नाऊ मन पाया, गुरमुख वेखण बोलना नाम जपत सुख पाया। नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार, गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार। भणत नानक सुनहु जन भाई, सतगुर सेवे।

सदा सहज सुख मन वसिया, सच्चे स्यों लिवलाया। ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण भुले, हौ मैं मोह वधाया। पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले, दूजे पाई चित लाया। जोगी जंगम सन्यासी भुले, विण गुर तत् न पाया। मन मुख दुखी सदा भ्रम भुले, तिन बिरता जन्म गवाया। नानक नाम रते सही जन समदे, जे आपे बख्श मिलाया। महला तीजा, नानक सो साला ही है, जिस वस सब किच होए। तिस हसरे वह प्राणी हो, तिस बिन अवर न कोए। गुरमुख अंतर मन वसै, सदा सदा सुख होए। पौड़ी

गुरमुख पाया जाए पौड़ी। सतगुर की वडियाई सतगुर दित्ती तुरहो हुकम।

तिना घर मोहन हम मैं अंदर सन साकत मुठे दुर्मति हर रसना जानन जिन्हें अमृत भरम लुटाया।

पुछो। नानक मन तन जिस प्रभु वसै, औ सद कुर्बान तिस जिनको पूर्व लिखिया, रस संत जन।

सुर सरी मिलत पवित्र पावन हुए जावै। ए वड़ियाई सतगुर नरवैर विच जित मिले तिसना भुख उतरै।

को हर्ष मान नहीं राजा के भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दिवा जा रहा तेरो जन हुए सोई कत डोले तीन भवन पर छाजा हाथ पसार सकै को जन कहो बोल सकै ना अंदाजा चेत अचे

बिसार अवर लगरी, संदिक तोहे साध नहीं कहियो, शरण परे तुमरी पगरी। कहत कबीर है बिनती सुने हो, मत कालहु जम की खबरी।